प्रभात महाराज की रचना आप सुन रहे थे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीतकार थे टीवी करंदीकर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है रेखा रायरीकर के स्वर में। रचनाकार है संत एकनाथ महाराज।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आपने सुनी रेखा रायरी करके स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत कान्हो पत्रा की रचना।

ರಾಗ ಛಾಯೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾಡಿ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं अनिर्बान बंदोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. कलाकार अनिर्बान बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen to a sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist is Anirban Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen to a sarod recital in the Rag Jaunpuri. Our artist Anirban Banerjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनिर्वाण बंदोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल। आज ही कलाकार हैं वर्णाली चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार वर्णाली चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to a Sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist was Anirban Banerjee. Accompanying him on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in Rag Gurjari Todi. Our artist is Barnali Chatterjee. Accompanying her on the tabla is Devashish Sarkar and on the harmonium is Jayant Pandey. Listen to a khayal in Rag Gurjari Todi. Our artist, Barnali Chatterjee.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजा काड़े का गायन. प्रस्तुत है राग पुरिया. मध्यलय ख्याल झपताल में निबद्ध है. बोल है अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है श्याम कुंवर मोरे घर आए. In the program of Hindustani Classical Music, we present vocal recital by Raja Kali. He presents Raag Puriya. Madhyalay Khyal set to Japtal, Bol Ab Taro Bina Kaun Mori Rakhe Laaj. Drut Khyal set to Teen Taal, Bol Shyam Kuvar More Ghar Aaye.

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे राजा काळे का गाया राग पुरिया। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर, वॉयलिन पर संगति कर रहे थे कैलाश पात्रा तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रकाश वगड़। अपना गायन जारी रखते हुए राजा काळे अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग छायानट। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है करत जो मोसे नेहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी लाडली करत बतिया। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग पुरिया बाय राजा काळे। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर, ऑन वॉयलिन बाय कैलाश पात्रा एंड ऑन हार्मोनियम बाय प्रकाश वगड़। कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल राजा काळे नाउ प्रेजेंट राग छायानट। विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल, बोल करत हो मोसे नेहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल, बोल प्यारी लाडली करत बतिया।

ये था राग छायानट। आप सुन रहे थे राजा काळे का शास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे नीलेश जाधव तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग छायानट। You were listening to vocal recital by Raja Kaale. He was accompanied on tabla by Nilesh Jadhav and on harmonium by Srinivas Acharya. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खाने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विथ हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभिया अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अकरम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: In the special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to a Sarod recital by Ustad Baba Alauddin Khan. Now listen to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer, Mujahid Niazi.
1: Adavaz Tirakwa sahab.
2: Adavaz.
1: Aayye, tashreef rakhi.
2: Hazir.
1: Aapke naam se to kaun hai jo waqif nahi hai? Ahmad Jan Khan Tirakwa ka naam to mashhoor hai. Bhartiya sangeet mein aapka apna ek sthan hai.
2: Meherbani hai aapki nawaz.
1: आज आप तशरीफ लाए हैं तो अगर आप इजाज़त दें तो कुछ थोड़ी बहुत बातें आपसे पूछ लें।
2: ज़रूर।
1: सबसे पहले तो साथ ये बताइए कि आपको तबला बजाने का शौक कैसे हुआ और कब हुआ?
2: बचपन में मुझे गाने का सबक हुआ था।
1: अच्छा।
2: मगर मेरी तबीयत रुझान इधर ही था बचपन में तबले की तरफ। बुजुर्गों ने कहा तो मैंने तबले पे डाल दो।
1: अच्छा। तो शुरू में क्या आपको गाने की तालीम
2: जी?
1: अच्छा। और उसके बाद फिर जब आपकी तबीयत रुझान उधर देखा तो तबले की तालीम?
2: मुझे वालिद ले गए बम्बई, वहाँ जाके मुनीर खान साहब से
1: जी
2: उनका शागिरद करवा दिया।
1: अच्छा। कितनी उम्र से आपने ये?
2: 12 बरस।
1: अच्छा उस्ताद, आपको तो रियाज कराया जाता होगा, और ये क्यों कर रियाज आप करते थे, कितनी देर करते थे, ये तो आप?
2: मैं बतलाता हूँ। पहले तो रियाज करते ही थे, मगर एक 9 बरस का चिल्ला लिया बुजुर्गों ने।
1: अच्छा।
2: 9 बरस तक मुझसे 20 घंटे 18 घंटे का चिल्ला करवाते थे।
1: वाह।
2: यानी मुझे 10 बजे तबले पर बिठाया
1: सुबह
2: तो 12-1 बजे छुड़वा लिया, तो रात को शाम को 7 बजे तक
1: जी
2: 7 बजे फिर छोड़वा दिया
1: जी।
2: फिर 8 घंटे की मोहलत हुई तो 8 बजे फिर बिठाया मुझे
1: जी।
2: तो 2 बजे 8 घंटे को छोड़वा दिया।
1: अच्छा। 2 बजे रात
2: जी हाँ। तो फिर 2:30 बजे से बैठा मैं तो सुबह 6 बजे तक।
1: अच्छा।
2: बजाता था
1: जी।
2: फिर थक के मैं पस्त हो जाता था।
1: अच्छा। तो मतलब ये है कि 24 घंटे में सिर्फ आपको 4 घंटे आराम करने के, खाना और
2: जी हाँ ये मिलते थे।
1: तो उस्ताद इसमें तो बड़ी मेहनत पड़ती होगी आपको 20 घंटे का रियाज 9 बरस तक
2: जी हाँ।
1: तो इसके लिए तो कोई खास खुराक भी आप?
2: खुराक मेरे बुजुर्गों ने बादाम
1: जी,
2: सुबह नहार कसरत करवा के मुझे
1: जी,
2: और बादाम पिलाते थे
1: जी,
2: और पानी की जगह दूध।
1: अच्छा।
2: कभी पानी नहीं पीने दिया, खाने के वक्त एक गिलास मिलता था।
1: अच्छा।
2: नहीं तो दूध, जिस वक्त प्यास लगी रियाज में।
1: तो कितने चिल्ले आपने इस तरह के किए?
2: बस 9 साल किया चिल्ला।
1: अच्छा उस्ताद ये तो बताइए कि आपके नाम अहमद जान खान के साथ ये थिरकवा क्यों लगाया जाता है? ये तो एक किस्म का खिताब मालूम होता है, क्या किसी ने आपको ये थिरकवा का खिताब दिया था?
2: जी हाँ, वो मेरे उस्ताद के जो वालिद थे
1: जी,
2: उन्होंने थिरकवा न्यू रखा नाम
1: जी,
2: क्या उन्होंने देखा कि अब इससे चैन ही नहीं है, थिरकता ही है।
1: अच्छा।
2: और लय में थिरकता है।

0: अच्छा तो तभी
1: और जैसा जिसे देखा वैसे ही कहने लगे, अच्छा। बजाने लगे वैसा ही। तो लयदार बहुत था मैं बचपने में, और अब भी खुदा का करम है, रुए रुए में लय है मेरे।
0: तो तभी से
1: मैं ये खुदा थिरकवा पड़ गया।
0: थिरकवा के नाम से सब आपको जानते हैं। क्या क्या नाम था आपका दादा उस्ताद का?
1: मेरे काले खां।
0: काले खां। अच्छा, तबले में कितने घराने हैं और कितने घरानों के बाद मशहूर हैं, ये तो आप बताएं। तो
1: ज़रूर बतलाऊंगा। फरक्काबादी
0: जी,
1: चलन
0: जी एक,
1: वहाँ का ये भी घराना है
0: जी,
1: नखलऊ का घराना
0: जी,
1: दिल्ली का घराना है
0: जी,
1: अजराले का घराना
0: अजराले। तो फरक्काबाद, लखनऊ, दिल्ली, अजराले
1: जी।
0: और अगर आप मुनासिब समझें और तकलीफ़ ना हो तो एक एक छोटी छोटी मिसाल इन तमाम बाजों के दे के और जरा हाथ से भी अगर आप सुना दें तो बहुत ही नवाजिश होगी आपकी। तो पहले जरा दिल्ली का बाज मुंह से पढ़ के सुना दीजिए, उसके बाद
1: बेहतर है। धाती धागे न धातल के तो धाती धागे, दिन आगे न ताती धागे न तातल के तो धाती धागे, दिन आगे न धाती धागे न धातल के धाती धागे, दिन आगे न धाती धागे न धातल के धाती धागे, दिन धाती धागे न धातल के धाती धागे, दिन आगे न धाती धागे दिन आगे न धाती धागे, दिन आगे न धाती धागे न धातल के धाती धागे, दिन आगे न धाती धागे दिन आगे न धाती धागे दिन आगे न धा।
0: ये तो अब इसको आप हाथ से

0: ये था दिल्ली का बात,
1: दिल्ली का।
0: अच्छा, अब एक टुकड़ा कोई अजाड़े का
1: बेहतर है।
0: अभी से हाथ से
1: बेहतर है।

0: ये तो था फरखाबादी
1: जी,
0: अब लखनऊ का बाज
1: के वो भी सुनिए लड़ान दादी का तेरा तेरे कितने घिन लड़ान दादी का तेरा तेरे कितने घिन लड़ान दादी।

0: उस्ताद, अपने घराने और अपने उस्ताद के अलावा आपको किसी और घराने की तबला भी तो पसंद आया होगा, मतलब किसी बुजुर्ग का तबला आपको पसंद आया हो या उनका घराना?
1: घराने तो ये चार ही हैं, किसी मगर इन बुजुर्गों का मुझे बहुत शौक। मेरठ में मैंने खान साहब नन्ने खान को सुना, कूड़े वाले थे
0: जी,
1: बड़े मियाँ काले खां के शागिर्द थे, वो उस्ताद थे जलाले के, उनके शागिर्द थे नन्ने खां, बहुत अच्छा बजाते थे और बड़े रौनक थी हाथ में, और खास जो जलाल का चलन था वो बजाते थे।
0: अच्छा।
1: और दिल्ली में
0: जी
1: हाँ साहब नत्थू खां, दिल्ली मैंने उनसे अच्छी नहीं सुनी किसी से
0: जी,
1: जैसे वो बजाते थे, और जिन जो अदायगी उनसे होती थी मैंने नहीं सुनी अपनी उम्र में
0: जी। अच्छा, इन बुजुर्ग की खूबियाँ तो आप ही बता सकेंगे, क्या उनमें बाबत थी, क्या चीज थी?
1: बाबत ये थी उनमें कि जो जहाँ का बोल था
0: जी
1: वो वैसे ही निकालते थे
0: जी,
1: और जो पाव भर का वजन है तो पाव भर करके ले जाते थे, डेढ़ पा या पौन पा करके नहीं ले जाते, तो वो असलियत जो थी वो बात थी उनके हाथ में, ये अच्छी मालूम हुई।
0: उस्ताद, ये तो खैर मानी हुई चीज़ है कि पुरानी तालीम तो फिर पुरानी तालीम है ही, असली चीज़ है और बुनियाद उसी चीज़ की है, मगर आपको इतना अच्छा होगा, आपने खुद भी तो कोई नई बात पैदा की होगी तबले में, या आपने कोई बंदिश, आपने पुरानी बंदिशों के आधार पर कुछ की होंगी, और एक दो मिसाल अगर आप दे सकें तो
1: जरूर ना सुनाऊं।
0: जी हाँ जरूर।
1: दार ना ना तिन ना करता दार तक करता देर करता कितने करता तोल करता देर करता कितार करता कितार करता देर करता कितार करता कितार करता देर करता कितार करता कितार तार हाथ तार करता देर करता कितार करता कितार करता देर करता कितार करता कितार करता देर करता कितार करता कितार तार हाथ तार करता देर करता कितार करता कितार करता देर करता कितार करता कितार करता कितार तार हाथ।
0: वाह,

0: क्या कहने उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। एक आध बंदिश अगर और
1: सुना। बहुत अच्छा। जी सुनो, मुंह से सुनाऊं पहले?
0: जी।
1: दिन दिन ना ना तिन तिन ना ना दिन
0: धर्म

0: करता था
1: जी,
0: और अपनी भी काम सुना रहे हैं और उनकी भी सुनना है,
1: क्या कहें,
0: और पब्लिक को भी अच्छा मालूम हो रहा है, ये रंग देखे और संगत साथ का मजा ये है।
1: जी हाँ, सही कहते हैं आप। अच्छा उस्ताद, अब कुछ तबले के ढंग के बारे में, यानी कि तबले कैसे सीखा जाए या क्या उसका हाथ कैसे रखा जाए या क्या, ये तो आप ही बता सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप अगर इस सिलसिले में अगर आप कुछ बताएं तो बड़ा साबित होगा।
0: बेहतर भाई, पहले तो हाथ ही रखाना, बच्चे का हाथ ही रखाना है
1: जी।
0: बहुत से तब ऐसा हाथ रखाते हैं क्या, बीच की उंगली उंगली पर चढ़ा देते हैं तो वो सुर बंद हो गया, एक सुर का तो बाजा है, जब इसकी लाव बंद हो गई तो किस काम बजा है।
1: बिल्कुल दुरुस्त फरमाते
0: हैं, नहीं चाहिए अब ऐसा, उठी रहती है उंगली
1: जी,
0: बीच की उंगली जो है तो बराबर की उंगली से ऊपर होनी चाहिए।
1: जैसे बंद कैसे हो जाएगी या खुली कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर तबले पे
0: बंद यूं हो जाएगी जब उंगली चढ़ जाएगी
1: जी, ये तो
0: लाओ नहीं रहेगी
1: जी हाँ,
0: और जो उंगली उठी जाएगी ये तरकीब है।
1: अच्छा, और
0: फिर तबला बायां
1: जी हाँ
0: एक होना चाहिए
1: जी,
0: तबला कुछ कह रहा बायां कुछ कह रहा वो ठीक नहीं
1: जी,
0: उसमें मजा कभी नहीं आ सकता ना वो तैयारी पे पहुंच सकता। कायदा इसका यह है, जैसा वजन है बोल का उसी तरकीब से जाए और बायां तबला एक होके जाए, ये ना हो कि अलग अलग बोल लिया वो कुछ कह रहा तबला कुछ कह रहा, तो वो समझ में ना पब्लिक की आए ना सुनने वालों की आए ना अपने
1: क्या कहने। और तबले के बोल भी तबले के बोल होने चाहिए
0: और असली बोल होने चाहिए, ना ताशा हो ना खंजरी हो ना ढोल हो ना कोई चीज गैर ना हो तबले से,
1: वो
0: तबले के बोल
1: होंगे।
0: और वो किन से मिलेगा,
1: जिन्होंने
0: बुजुर्गों से सीखा
1: जी हाँ,
0: और वो देख के उनको से सीखे
1: जी हाँ,
0: तो बढ़ने की सूरत है
1: जी हाँ, बिल्कुल आप सही।
0: और करनी
1: करना रियाज करना
0: जी हाँ।
1: बहरहाल साहब क्या कहूँ, बहुत खुशी हुई आपसे इस वक्त मुलाकात करके, और आपने बहुत ही फायदे की बातें बताई, और
0: मेहरबानी।
2: In the special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer was Mujahid Niyazi. This program is a contribution of Central Archives of All India Radio, New Delhi, compiled at Akashavani Bengaluru for Ragam 24/7 Indian Classical Music Channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन. उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर. ही इज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के. पंडित राजेंद्र अंतरकर प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विद ताल द्रुत तीन ताल।

ದಿನ ಕಡಿದ ತದಿಂತ

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू वेर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। ही वॉज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद, तदुपरांत जौनपुरी धमार. कलाकार हैं सुमोना गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबाल नाथ और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist is Shumona Gupto. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Prabal Nath and on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद तदुपरांत जौनपुरी धमार सुन रहे थे। कलाकार थी सुमोना गुप्ता। आपके साथ पखवास पर संगीत है प्रवालनाथ और हारमोनियम संगीत है कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिरी पर सितार वादन। कलाकार हैं रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad, followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist was Sumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist is Reena Srivastava.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थी रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist was Reena Srivastava. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संतूर वादन. कलाकार है श्री सिद्धनाथ मिश्रा. सबसे पहले आप बजाएंगे राग बसंत मुखारी. विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सनी न्याजी. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर प्रेजेंटिंग संतूर रिसाइटल बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा. फर्स्टली He is presenting Raag Basant Mukhari. Both the compositions are set to Teen Taal. Accompanying him on tabla, Sani Niazi.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग बसंत मुखारी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग चारुकेशी। तबले पर संगति दी है सनी नियाजी ने। विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल पर निबद्ध है। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग बसंत मुखारी बाई सिद्धनाथ मिश्र। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला सनी। Both the compositions set to Teen Tal.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग चारुकेशी। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ यू आर लिसनिंग राग चारुकेशी बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा। अब आपके सामने प्रस्तुत है पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट पखावज वादन by Pandit Raj Khushiram. He is presenting Mohan Tal and accompanying him on Sarangi, Vinod Kumar Mishra.

रंगीपरण प्रस्तुत है। इसमें छह प्रकार की लयों का वर्णन किया गया है। टिट कत ग धी ग धा तिट धा तिट धा धा तिट किट धा तिट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगिन धा तगिट तक तक धगिट दग दिन धगिट दग दिन धगिन धा किट तक दिगन न किट तक तकिट थुकिट तक धाधिर धिकिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन लान धगिट दान திருக்கடத்துக்கு தாத்திரிக்கிறதுக்கு கந்தா திருக்கடத்துக்கு தாத்திரிக்கிறதுக்கு கந்தா கந்தா திருக்கடத்துக்கு தாத்திரிக்கிறதுக்கு கந்தா கந்தா திருக்கடத்துக்கு தாத்திரிக்கிறதுக்கு கந்தா கந்தா

प्रस्तुत है नव दुर्गा परन। इसमें नौ देवियों के नाम आए हैं और गुरु कृपा से ये स्वनिर्मित है। दुर्गे दुर्गति हारणी माता दिधान तान धा धाता शैल पुत्री जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलनी त्रयताप हारणी गदगण धा चंद्र घंटा गणन गणन घन घनात घनन घन कुष्मांडा गदिन धान धान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय क्लान त्रिगृतिक तकान महा गौरी जय सिद्धिदात्री अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिगृत ईशत्व धा वैशत्व धा प्रकाम्य प्राप्त अंतर मितत्व धा धा धा पुंगी फल तांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर करधर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धाधन जय बा जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा धा धा

अभी आप सुन रहे थे पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग मोहन ताल ऑन पखावज बाई पंडित राज खुशी राम। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडेशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग भैरवी में एक धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 247 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत ब्रो. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Braspati. First listen to Rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami Sarangi.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। She was accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi. Now listen to Rag Hindol.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. श्रोताओं, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य. आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं. कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य. तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. वी प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स. वी बिगिन द प्रोग्राम विद मीरा भजन फॉलोड बाय अ कबीर भजन. आवर आर्टिस्ट इज Nandini Bhattacharya. Listen now to Meera and Kabir Bhajans. Our artist, Nandini Bhattacharya.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nobunita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chando.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।